91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के।

0: से बोलो
1: जय माता दी, जय माता दी।
2: हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: 91.2 MHz पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: 91.2 MHz पर। ए तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी। श्रोताओं, कन तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

ए तुहां सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे इस कार्यक्रम सुनने दे माटी दी महक ता सुनदे न कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इयां ही बनी रिया कने सुनदे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह तोहा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहा सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पन दी।

0: समोसा मिलेगा। शट अप कर जाओ।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
0: चुप यार।
1: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे अरे भाई पीने का पानी और ले आ,
2: ले लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है
3: भैया? अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी।
4: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
7: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
8: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
9: मोहित मेरा इस्तीफा।
10: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
9: सॉरी यार।
10: काम कीजिए आप लोग।
8: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
11: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
12: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
13: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
14: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
12: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
14: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
15: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
16: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
15: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
17: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
18: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
17: सॉरी बेबी।
18: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तंगी दोनों के लिए चल रही है ना। तो

दिल इसको दूं या उसको दूं। उई, इतनी बड़ी मैं दिल और एक दिल किसको दूं।

0: अरे भाई साहब, समोसा मिलेगा?
1: शट अप कर जाओ।
2: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो?
3: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार।
2: पति को, परिवार को, शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
3: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
2: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ।
3: अरे

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई, पीने का पानी और लिया?
2: ले लो भैया पानी।
1: छोटू, मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है
3: भैया? अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी।
4: जल है तो कल है।

0: इलेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
1: इलेक्शन के लिए
2: जब बैठे तुझे लगेगा
0: मेरी बात
2: कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
0: इलेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
3: एक बार लेने से कुछ नहीं होता।
1: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
4: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
1: किसने कहा तुमसे
5: कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
4: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
6: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
1: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
6: सॉरी बेबी।
1: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तभी दोनों के लिए चल रही है ना। अगर ना तो

दोस्तों, आप अक्सर परेशान इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हमें तकदीर से ज्यादा और वक्त से पहले चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि मेहनत का फल तुरंत मिल जाए, इंतजार किए बिना मंजिल मिल जाए और जिंदगी हमारी इच्छा के हिसाब से तुरंत बदल जाए। लेकिन जीवन अपने समय से चलता है, हर चीज का एक समय होता है। बीज बोने के बाद फल आने में भी वक्त लगता है, इसलिए मेहनत करते रहिए, जो मिला है उसकी कद्र करिए और जो अभी नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखिए, क्योंकि कभी कभी हमारी परेशानी हालात से नहीं, हमारी जल्दबाजी और जरूरत से ज्यादा उम्मीदों से पैदा होती है। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातों के साथ और बहुत ही प्यारी सी शुरुआत के साथ तो स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान भी आप सभी बहुत अच्छे से रख रहे हैं और साथ ही साथ अपनी डेली रूटीन को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो आज 4 अक्टूबर 2026 का दिन है, रविवार का दिन, संडे का दिन है, अपनों का दिन, अपनों के प्यार का दिन। अपनों के साथ बिताया हर एक पल हमारी जिंदगी में बहुत खास होता है। जी दोस्तों, जिस तरह से प्यारी प्यारी सी पहाड़ियों का ये नज़ारा सुबह उठते ही हमारी आंखों के सामने होता है, बस उसी तरह से खिलता हुआ चेहरा अपने परिवार का अगर हम हंसता खिलखिलाता हुआ देख लें तो ज़िंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है, दिन और भी प्यारा हो जाता है। यानी कि सुबह की शुरुआत प्यारी हो जाती है और दिन की शुरुआत आप सभी प्यारा बनाने वाले हैं इस प्यारे से खूबसूरत से कार्यक्रम के साथ। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए लेकर चलते हैं आप सभी को मनोरंजन की ओर। तो इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत और इसी गीत के साथ शुरुआत करेंगे कार्यक्रम में मनोरंजन की।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ। जी दोस्तों, अब रुख करते हैं कार्यक्रम में तापमान की ओर, मौसम की ओर। तो इस समय दोस्तों, धर्मशाला के तापमान की अगर हम बात करें तो लगभग 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस समय का तापमान जो है वो आप सभी महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी खिली खिली सी धूप जो है वो आप सभी इंजॉय भी कर रहे हैं। और ख़ास करके जब काम होते हैं दोस्तों, तो मौसम डराता भी है और घबराहट भी होती है, क्योंकि ख़ास करके खेती के काम की हम बात करें, हम यही सोचते हैं कि फटाफट से बिना बारिश के काम अच्छे से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो काम जो है जो एक हफ्ते में होने वाला, क्योंकि धान की हम बात करें दोस्तों तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, जहाँ गेहूं की बात करें तो वो फटाफट से हो जाता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय जो है वो ज़रूर लगता है। तो ऐसे में मौसम भी समय ले लेके परेशान करते हैं, बट कोई बात नहीं, मौसम है, प्रकृति के अनुसार जो है हमें खुद को ढालना होता है, एडजस्ट करना होता है। इसी के साथ दोस्तों, बात करें मौसम की, तो हिमाचल प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून 3 अक्टूबर को पूरी तरह से विदा हो गया, यानी कि पिछले कल। इस बार मानसून ने प्रदेश को औसत से कम बारिश दी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की मानसून रिपोर्ट के अनुसार जून से सितंबर तक प्रदेश में 652.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 734.4 मिलीमीटर रहती है। इस तरह प्रदेश में मानसूनी बारिश 11% कम रही। जी दोस्तों, तो ये है मौसम का हाल फिलहाल के लिए। अगर हम बात करें तो अब तो हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है मौसम चेंज हो ही गया है लगभग, तो ऐसे में हमें अपनी सेहत का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना, आता जाता मौसम जो रहता है उसमें बहुत सारी बीमारियाँ भी आती जाती रहती हैं हमारे ज़िंदगी में, हमारे घरों में, हमारे अपनों के पास। तो जितना हम केयरफुल रहेंगे उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो ये थी मौसम की अपडेट। अब फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम में प्यारे से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों कुछ ना कहूँ मूवी का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाजों के साथ आप सभी ने इंजॉय किया। और जहाँ बात है कुछ ना कहूँ की, तो दोस्तों मैं तो बहुत कुछ कहने वाली हूँ क्योंकि आप सभी के साथ जुड़ते ही इसलिए हैं, ढेर सारी बातें करने के लिए, ढेर सारी कुछ नई नई अपडेट्स आप सभी तक पहुँचाने के लिए, और साथ ही प्यारे प्यारे से गीत आप सभी के कानों तक बिना मेहनत बिना समय की बर्बादी किए। कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी बात है। बिल्कुल दोस्तों, कहते हैं ना खुद की तारीफ खुद करनी चाहिए, उससे हमें ना बहुत ज़्यादा जो है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत जो है ना वो दो गुना बढ़ जाती है। तो ऐसा ही होना चाहिए हर इंसान में। हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि कोई हमारी तारीफ करे, तभी हम खुद को महान समझें। जैसा ज़्यादा महान समझ के हम फिर एटीट्यूड में चले जाते हैं, घमंड में चले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खैर दोस्तों, ये तो है कुछ खट्टी मीठी सी बातें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी, ये तो चलती ही रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बातें ख़त्म हो गई तो ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, फिर तो बोरिंग सी ज़िंदगी है। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों आज के दिन की। तो आज के दिन की शुरुआत आप सभी की किस तरह से रही होगी? बहुत अलग तरीके से रही होगी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन थोड़ी रूटीन भी बिगड़ जाती है, थोड़ा आलस भी आ जाता है, थोड़ा रिलैक्स करने का मन करता है, चाहे परिवार के साथ चाहे अकेले, जिस भी तरह से हो। जब हम वर्किंग में होते हैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी परेशानियां हमारे दिमाग में चली रहती हैं। इस समय हमने निकलना है, इस समय हमने जाना है, कहीं ट्रैफिक मिल गया, हम लेट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मतलब न जाने कितनी सारी बातें दिमाग में एक साथ दौड़ती रहती हैं, भागती रहती हैं, और हम भी भाग रहे होते हैं लोगों के पीछे पीछे, लोगों को देख के। तो भागना बिल्कुल नहीं है, भागिए, लेकिन थोड़ा सा अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखकर, क्योंकि आज के समय में बहुत मुश्किल है। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो इंसानों को इंसानों से डर है, रोड पे निकलते हैं तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, हर घर में दो तीन गाड़ियाँ तो आजकल नॉर्मल सी बात हो गई है देखने के लिए, एक तो कहीं गई ही।

नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आप देखेंगे ना कि रोड क्रॉस करना तक इतना मुश्किल हो जाता है सुबह के समय में और शाम के समय, यानी कि ड्यूटी ऑफ टाइम और मॉर्निंग में ड्यूटी टाइम। तो ऐसे में बच्चों को तो कभी भी अकेले सड़क पे मत भेजिए, क्योंकि जाने अनजाने में वो भले ही बहुत केयरफुली रोड क्रॉस करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जो हुड़दंग बाज होते हैं वो कुछ नहीं देखते, या तो बाय मिस्टेकली जो है वो गलतियां हो जाती हैं और जाने अनजाने में जो है घटनाएं घट जाती हैं। तो सेफ्टी सबसे पहले हमारी ज़िंदगी की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, ज़िंदगी है तो जहान है, और ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है अगर इसे प्यार से बहुत गहराई से जिया जाए। जी दोस्तों, तो चाय के कप के साथ या कॉफ़ी के साथ या ग्रीन टी के साथ या ब्लैक टी के साथ या मसाले वाली चाय के साथ आपकी सुबह की शुरुआत रही होगी, और ख़ास करके परिवार के साथ। नहीं तो एक कहाँ दूसरा कहाँ तीसरा कहाँ, इस तरह से रूटीन चलती है। लेकिन आज का दिन छुट्टी वाला दिन है, तो सबके साथ आराम से चाय पिए, पानी पिए, गर्म पानी। कुछ लोगों की रूटीन होती है जो हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, तो वो अपनी रूटीन को उस तरह से शुरू करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, उसी तरह से हमारे कार्यक्रम में भी ढेर सारी बातों के साथ शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन और भी बहुत सारी बातें और भी बहुत सारी जानकारियाँ आप सभी के लिए। लेकिन उससे पहले आइए फिर से चलते हैं एक और गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों कार्यक्रम का ये अगला गीत, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, ये क्या दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ शुरुआत कर रहे हैं संडे वाले दिन की। जी दोस्तों, दिन की सुबह की शुरुआत हो चुकी है आप सभी की, हालांकि थोड़ी देर से हुई है, 8 बजे हुई होगी, 7 बजे हुई होगी, अलग अलग रूटीन से हुई होगी, लेकिन दिन की शुरुआत तो अभी हो रही है इस खूबसूरत से प्यारे से कार्यक्रम के साथ। जी दोस्तों, तो ढेर सारी बातें आप सभी के साथ कर रहे हैं और आज का दिन यानी कि 4 अक्टूबर 2026 का दिन है। देखिए दोस्तों, समय बहुत ही तेजी से भागता जा रहा है, कुछ ही समय के बाद जो है वो 2026 को भी अलविदा कहना पड़ेगा और 2027 में एंट्री होने को है। बस ऐसे लगता है कि जैसे एंडिंग होती है तभी पता चलता है, शुरुआत होती है तभी पता चलता है, लेकिन बीच का सफर कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। बस इसी तरह से चल रही है जिंदगी। खैर दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है, वैसे तो हर दिन खास होता है, अपना एक इतिहास हर दिन का रहता है, अपनी अपनी कहानी, जैसे घर घर की कहानी, हर एक इंसान की अपनी अपनी एक कहानी, उसी तरह से आज के दिन की भी एक अलग कहानी, एक अलग बात। लेकिन आज के दिन की जो खासियत है दोस्तों, वो हमारी जिंदगी से थोड़ी मिलती जुलती है, जो हमारे कर्म है ना, थोड़ा उस पे ध्यान जाने वाला है आज की बात से। तो ज़रूर बात करेंगे दोस्तों कि क्या खास बात है आज के दिन की और ऐसे कौन से हमारे कर्म हैं जो उस दिन के लिए हमें थोड़ा सीख लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वापस आते हैं इस बातचीत पे, लेकिन उससे पहले लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक और गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों धनबाद मूवी का ये गीत आप सभी एंजॉय कर रहे थे अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों धनबाद की अगर हम बात करें तो इंसान को अपना जो व्यवहार है ना, अपना जो एक

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। ट्यून किया है आप सभी ने 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन हरमशाला। जी दोस्तों, तो कहते हैं ना, एकदम से जब कोई भी मुसीबत आ जाती है ना, तो समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, और दिमाग एकदम से कन्फ्यूज हो जाता है। बट फिर खुद को स्टेबल करना, खुद को उस चीज़ में लेकर आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें दोस्तों, करना पड़ता है। कहते हैं ना, जिंदगी है और समय के हिसाब से खुद को ढालना, समय के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना, हर सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना सबके लिए ज़रूरी होता है। तो अब फिर से चलते हैं दोस्तों अपनी बातचीत की ओर। तो आज अगर हम बात करें तो 4 अक्टूबर 2026 का दिन है, बहुत खास दिन है दोस्तों, क्योंकि आज के दिन आप सभी मना रहे हैं वर्ल्ड एनिमल डे। तो पशुओं की हम बात करें दोस्तों, तो खास करके जो आज के समय में हम सड़कों पे देखते हैं, बहुत सारे पशु जो हैं वो यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। पहले होता था, घरों में देखने को मिलते थे, घर मतलब कि लोगों के घरों में रखे होते थे, गाय भैंस बैल

हर कुछ मतलब कि अपने हिसाब से जो है उनकी केयर की जाती थी, ज़रूरत के लिए उनका यूज़ भी किया जाता था, लेकिन उनकी केयर भी एक फैमिली मेंबर की तरह की जाती थी। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो वो बेजुबान जो है सड़कों पे नज़र आते हैं, कहीं उन्हें जो है सर पे छत नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी भी नदियों से या नालों से यहाँ वहाँ से वो पानी वगैरह पी लेते हैं, खाना भी कहीं उजाड़ करके तो लोग उससे भी परेशान हो जाते हैं। तो एक सोचने वाली बात है कि जब हमने उन्हें घर से बेघर कर दिया तो वो कहाँ जाएंगे, वो उजाड़ ही करेंगे, क्योंकि पेट की बात है दोस्तों, तो वक्त की रोटी, इंसान भी उसी लिए पूरी भागदौड़ कर रहा है इस दुनिया में, तो वो भी दो वक्त की रोटी के लिए कुछ तो करेंगे, भूखे पेट तो वो नहीं रह सकते ना, जैसे हम नहीं रह सकते, तो उनमें भी जान है, हालांकि वो कह नहीं सकते हैं, इसीलिए शायद हम उनके साथ ये नाइंसाफी करते हैं, उनके साथ ये गलत व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कर्म जो है हमें सोच समझ कर ही करने चाहिए, आगे चलकर या आने वाले समय में न जाने वो किस तरह से हमारे सामने आए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें ज़रूर सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, इस पर हम ज़रूर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जितनी छोटी सी बात सुनने में लग रही है उतनी है नहीं, ये बहुत गंभीर बात है और बहुत ही ज़रूरी बात है। तो फिलहाल इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला गीत, उसके बाद फिर से वापस आएंगे कार्यक्रम में बहुत ही खास बातचीत के साथ।

दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं बातचीत के साथ साथ कुछ खास जानकारियों की ओर। दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की 23वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 15 दिसंबर 2026 से नादौन जिला हमीरपुर में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह नादौन में नवनिर्मित स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 दिसंबर को आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. प्रबोध सक्सेना, प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी और निदेशक डॉ. मदन गोपाल शर्मा ने सीएम से अनुरोध किया था। ये प्रतियोगिता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 24 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। दोस्तों खेलकूद की बात जहां भी आती है तो खेलकूद हम सभी के जिंदगी में बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे जो बचपन में होते हैं।

तो आज स्पोर्ट्स की हम बात करें दोस्तों, तो स्पोर्ट्स किसी भी फील्ड में जो है किसी फील्ड से कम नहीं है। तो बच्चे आज स्पोर्ट्स में भी अपने देश का नाम जो है गर्वान्वित कर रही हैं, चाहे वो लड़कियों की बात हो चाहे वो लड़कों की बात हो, जो मेहनत कर रहे हैं जी जान से, वो अपना नाम अपनी पहचान जो है वो ज़रूर बना रहे हैं। तो कभी भी पेरेंट्स ये ना सोचें कि ये खेलकूद में क्या ही रखा है, सिर्फ पढ़ाई में ही सब कुछ है। तो ऐसा बच्चों के सपनों को तोड़ने से बेहतर है उन्हें समझें। तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी के लिए, आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों कहते हैं इंसान को अपने ऊंचे होने का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई चाहे कितनी भी हो, एक दिन सबको जमीन पर ही लौटना पड़ता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसके बिना किसी का काम नहीं चलेगा। उसकी यही सोच धीरे धीरे उसका अहंकार बन जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अहंकार इंसान को कभी उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाले रिश्ते जरूर छीन लेता है। क्योंकि अहंकार एक ऐसा मेहमान है जो इंसान की जिंदगी में आता तो अकेला है, लेकिन जाते जाते सारे रिश्ते नाते साथ लेकर चला जाता है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम विश्व पशु दिवस की, और ये बहुत ही खूबसूरत सी कुछ लाइनें थी जो कि इस विषय से रिलेटेड ज़रूर, अगर हम करना चाहें ना दोस्तों, अगर अपने कर्मों पे नज़र दौड़ाना चाहें तो ये ज़रूर इससे रिलेट करेंगी। क्योंकि आज हम पहले का समय था कि इतने पैसे नहीं होते थे, इतना नहीं कमा पाते थे, क्योंकि फैमिली में सिर्फ एक मेंबर जो है वो बाहर काम करते थे, तो बहुत मुश्किल हो जाता था। घर में लोग भी ज़्यादा होते थे तो घर का जो एक कह सकते रूटीन चलाना, उसके जीवन शैली को चलाना थोड़ा मुश्किल रहता था। तो तब ज़्यादा से ज़्यादा हम नेचुरल चीज़ों में जो है वो विश्वास रखते थे, फिर चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मशीनी वर्क पे इतना हम नहीं जाते थे। खैर उस समय इतना जो अपडेट नहीं हुई थी चीज़ें, लेकिन ये तो नहीं है कि जैसे ही ज़रूरतें ख़त्म हम उस चीज़ को साइड में कर दें, उन्हें नज़रअंदाज कर दें, उन्हें घर से निकाल दें, उन्हें बेघर कर दें, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें। तो ये तो पशुओं की बात है, आज तो खैर दोस्तों इंसानों की भी कोई कीमत नहीं रही है ज़िंदगी में। जैसे जैसे कुछ लोगों की सोच पैसों का गुमान जो है वो चढ़ता जाता है, अहंकार आता जाता है, तो घर में कई लोगों को बुज़ुर्ग हों, चाहे कोई बीमार व्यक्ति हो, तो वो भी बोझ लगने लग जाते हैं, उन्हें भी बेघर कर देते हैं, उन्हें भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन खैर वो तो बोल सकते हैं, बोलकर भी वो नहीं बोल पाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों की अहमियत को समझते हुए। लेकिन ये जो बेजुबान, जो कुछ कह नहीं सकते, अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते, तो उनके लिए हम इंसान ही लड़ सकते हैं, हम इंसान ही आवाज़ उठा सकते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके प्रति जो है हमें ज़रूर कार्रवाई करवानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम बारिश में, ठंड में, जब हम सड़क में रहने के लिए मजबूर हो जाएं, तो सोचिए क्या होगा। तो ये तो फिर बोल सकते हैं ना, एक छत ही तो चाहिए होती है इनको, एक मतलब कि दो वक्त की रोटी, चाहे आप थोड़ा भी दे देंगे ये तब भी कुछ नहीं कहेंगे, ये फिर भी खा लेंगे। तो ऐसी है आज की ज़िंदगी, और हम इंसानों की सोच, हमारी इंसानियत तो पता नहीं कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। तो खैर इस पर हम ज़रूर बात करेंगे और भी, लेकिन उससे पहले आइए इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों इस प्यारे से पंजाबी म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला में अपने रेडियो दोस्त रचिका के साथ। जी दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही एंजॉय कर रहे हैं आज के यानी कि रविवार के दिन की रूटीन। जी दोस्तों, आइए इसी के साथ लेकर चलते हैं आप सभी को एक बहुत ही खास जानकारी की ओर। दोस्तों, कांगड़ा जिला के धान उत्पादक किसानों के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। खेती को लाभ का सौदा बनाने और अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का पूरा मोल चुकाने के लक्ष्य से शनिवार को जिले के चार प्रमुख स्थानों रियाली, फतेहपुर, मिलवा और नगरोटा वगवा में धान की सरकारी खरीद विधिवत रूप से शुरू कर दी गई है। किसानों के लिए इस बार सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में शानदार बढ़ोतरी की है, जिससे कि अब उन्हें अपनी फसल बेचने पर पिछले साल के किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाते हुए इस वर्ष धान की MSP के आकर्षक वृद्धि की गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले वर्ष धान सीजन में किसानों को 2389 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया गया था, लेकिन इस वर्ष सरकार ने इस समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 2461 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। जी दोस्तों, प्रति क्विंटल जो है वो 72 रुपए की इस सीधी बढ़ोतरी से जिले के हजारों किसानों को भारी आर्थिक संबल मिलेगा। तो ये बहुत ही खास जानकारी दोस्तों आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों 91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और आज का दिन बहुत ही खास है दोस्तों, विश्व पशु दिवस आप सभी मना रहे हैं और आज हमें सड़कों पे हजारों के उसमें जो है वो देखने को मिल रहे हैं बेजुबान पशु। वैसे तो उन्हें आवारा पशु का टैग दिया जाता है लेकिन हम उन्हें बेजुबान कहेंगे दोस्तों, क्योंकि वो कह नहीं सकते ना, इसलिए हम उन्हें जहाँ मन करता है वहाँ छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते जिनका लगाव बहुत लंबे समय से अपने उनकी फैमिली मेंबर की तरह बन चुके होते हैं, तो वो उन्हें कहीं भी छोड़ के आओगे ना वो वापस घर पहुँच जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, एक इमोशनली अटैचमेंट जो होती है वो बहुत ही अजीब सी होती है, फिर वो चाहे इंसानों की हो चाहे, और ये जो जानवरों के साथ हमारी अटैचमेंट होती है ना, ये बहुत सुकून भरी रहती है कई बार। तो दोस्तों आज का दिन वाकई में बहुत खास है, खास करके जो लोग इनके साथ गलत करते हैं, इनके साथ जो है वो अन्याय करते हैं। दुनिया भर में पशुओं के अधिकार संरक्षण और कल्याण को समर्पित ये एक महत्वपूर्ण दिन है। हर वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस लोगों को याद दिलाता है कि पृथ्वी पर मौजूद हर पशु का जीवन मूल्यवान है और उसे सम्मान, सुरक्षा और करुणा मिलनी चाहिए। दोस्तों वाकई में जिस तरह से हम सोचते हैं कि हमें सम्मान मिले, हमें हर कहीं जो है वो एक अच्छी जिंदगी बेहतर मिल सके, तो वो अगर इस दुनिया में आए हैं तो वो भी डिजर्व करते हैं। जब तक आपकी अपनी ज़रूरतें होती हैं आप उनका यूज़ करते हैं, जब ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं आप उन्हें बाहर फेंक देते हैं, ये ऐसा क्यों? दोस्तों 2026 में ये दिन और भी खास इसलिए है क्योंकि तेजी से बदलते पर्यावरण, घटती जैव विविधता और बढ़ते पशु अत्याचार ने पूरी दुनिया को पशु संरक्षण के प्रति गंभीर होने पर मजबूर कर दिया है। जी दोस्तों, ये एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य मानव समाज को पशुओं के अधिकारों और भलाई के लिए एकजुट करना है। ये दिन सिर्फ जागरूकता भर नहीं बढ़ाता बल्कि लोगों को सक्रिय रूप से पशु संरक्षण के दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो घरेलू पशु हों, जंगली जानवर हों, समुद्री जीव हों या खतरे में पड़ी प्रजातियां। तो हर किसी को इसके लिए अवेयर होना बेहद जरूरी है, सोच बहुत बदलने की ज़रूरत है, चाहे इंसानों के प्रति चाहे जानवरों के प्रति। तो दोस्तों ये जो हमारी जागरूकता है, हमेशा यही कहूँगी कि सिर्फ उस दिन तक या सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे वाकई में अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, तभी कह सकते हैं कि आप में इंसानियत वाकई में है। फिलहाल इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: सुधीर बस खराब हो गया छे गाड़ी साइड
1: में पागल हो गए दादा। अरे बुढ़िया ने देख लिया तो समझ जाएगी कि हम उसका पीछा कर रहे हैं।
0: स्मार्ट बॉय
1: आगे जाकर भाग।
2: तुम दोनों का नाम क्या है?
1: चैटर्जी।

दोस्तों एंजॉय कर रहे हैं आज के दिन आप कुछ खास बातचीत और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो आइए दोस्तों कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बातचीत का रुख जो है वो जानकारियों की ओर करते हैं। तो लेकर चलते हैं आप सभी को कुछ खास जानकारियों की ओर। दोस्तों बागवानी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में सुंदरनगर के पलौटा 2 क्लस्टर में प्रदेश की पहली बागवानी मोनोरेल परियोजना का काम शुरू हो गया है। एचपी शिवा परियोजना के तहत एशियाई विकास बैंक के सहयोग से इस पायलट प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जा रहा है। क्लस्टर कमेटी और बागवानी विभाग की टीम ने मोनोरेल के करीब 300 मीटर ट्रैक का निर्माण पूरा कर इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। जी दोस्तों बागवानी विभाग सुंदरनगर की टीम ने उद्यान विकास अधिकारी अनुपमा मेहरा की अगुवाई में मौके का निरीक्षण किया। इसी के साथ दोस्तों एक और खास जानकारी जो है वो भी आप सभी तक पहुंचाना चाहूंगे। हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों के लिए एक बेहद सुखद खबर है। अक्सर टैक्सी चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों पर लगाम कसने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के माध्यम से एक अहम कदम उठाया है। धर्मशाला बस स्टैंड के बाहर एक नया प्रीपेड टैक्सी बूथ स्थापित किया गया है। अब यहां से यात्री बिना किसी मोलभाव के सीधे और पारदर्शी तरीके से अपनी टैक्सी बुक कर सकेंगे, जिससे कि उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की राहत मिलेगी। पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश देश विदेश के लोगों की पहली पसंद रहता है और ऐसे में परिवहन सुविधाओं का सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता है। जी दोस्तों तो ये बहुत खास बात है और शिमला में ये प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू करने के साथ ही अब धर्मशाला के बस स्टैंड पर भी इसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। तो अक्सर ये शिकायत बहुत सारे टूरिस्ट को रहती है दोस्तों कि मनमाना किराया जो है वो लिया जाता है, कुछ से ज़्यादा लिया जाता है, कुछ से कम लिया जाता है, न जाने किस तरह से। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए जो है ये कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तो हो सकता है कि लोगों को राहत मिले इस कदम से और वो अपनी यात्रा, अपनी इस टूर को, पिकनिक को एंजॉय कर सकें, क्योंकि धर्मशाला टूरिस्ट प्लेस है, एजुकेशन हब है, बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। तो सभी की अपनी अपनी जो ये यात्रा है वो सफल हो ये उम्मीद करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। फिलहाल हमारा जो ये कार्यक्रम का सफर है ये भी बिना किसी प्रॉब्लम के इसी तरह से चलता रहना चाहिए। बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम्स भी हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, तो इससे इसका समाधान करके आगे बढ़ना हमारे लिए सबसे बेहतर है। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, कार्यक्रम के एक खूबसूरत से गीत के साथ।

उसे इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आइए बातचीत की और रुख करते हैं। और जहां हम देख रहे हैं कि इन दिनों में स्पोर्ट्स का कुछ बहुत ही जज्बा जो है वो छाया हुआ है और आए दिन जो है बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। जी दोस्तों, भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीता। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 211 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 192 रन ही बना सकी। जी दोस्तों, भारत ने T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया। और इसी के साथ दोस्तों बात करें धर्मशाला की, तो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की खराब आउटफील्ड ने बिलासपुर को रणजी क्रिकेट की मेजबानी दिला दी है। जी दोस्तों, हिमाचल और मुंबई के बीच 18 से 21 अक्टूबर तक खेला जाने वाला रणजी मुकाबला धर्मशाला के बजाय लुहनू क्रिकेट मैदान में होगा। मैदान को पूरी तरह मैच के लिए तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से HPCA ने मुकाबले को बिलासपुर शिफ्ट किया है। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारियां आप सभी तक पहुंचाई गई हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और समय भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एक एंड पॉइंट की ओर। जी दोस्तों, फिलहाल एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। जी दोस्तों, तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो आज के कार्यक्रम में बहुत खास और बहुत ही एक जरूरी सी बातचीत, हाँ थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट हुई उसकी वजह से थोड़ी बहुत बातें हो सकता है छूट गई हूँ, क्योंकि फिर दोस्तों एकदम से चीज़ों को मैनेज करना, एकदम से उस फ्लो में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश कायम थी। और उम्मीद है दोस्तों कि ज़रूर आप सभी ने जो है प्रोग्राम एंजॉय किया होगा संडे को, ज़रूर इस रूटीन के साथ, दिन की शुरुआत के साथ। तो दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को, और डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज।

0: अरे भाई साहब समोसा मिलेगा,
1: शट अप कर जाओ।
2: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
3: अरे भूल गए भूल गए भूल गए, अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार।
2: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
3: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
2: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
3: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
2: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ,
3: ये लो भैया पानी।
2: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
4: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
5: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
6: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
5: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
6: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
7: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
8: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
9: मोहित मेरा इस्तीफा।
0: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
9: सॉरी यार,
0: काम कीजिए आप लोग।
8: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
10: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
11: बोला था ना तुझे कि क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
12: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
13: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
11: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
13: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
14: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
11: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
14: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
15: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
16: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
15: सॉरी बेबी।
16: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तंगी दोनों के लिए चल रही है ना। अगर ना तो

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: मिलेगा। सेट अप कर जाओ।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
0: चुप यार।
1: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
2: पूरा खाना एक साथ नहीं,
1: थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पाने की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पाने की तरह बहाते रहेंगे अरे भाई पीने का पानी और ले
2: आया, ले लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है
3: भैया? अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
4: जल है तो कल है।

0: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
2: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
7: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
1: मोहित मेरा इस्तीफा।
0: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
1: सॉरी यार,
0: काम कीजिए आप लोग।
7: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
8: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
9: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
10: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
11: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
9: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
11: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
12: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
9: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
12: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
13: मम्मी वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
11: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
13: सॉरी बेबी।
11: क्या सॉरी यार, कमाल है।
14: एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए।
11: 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तंगी दोनों के लिए चल रही है ना।
14: अगर ना हो तो

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज के इस एपिसोड को लेकर के मैं बड़ी एक्साइटेड हूं, क्योंकि काफी मेहनत करके मैंने ये कुछ गाने जो हैं वो आपके लिए ढूंढे हैं। क्यों मेहनत लगी? क्योंकि इतने सारे बेहतरीन गाने हैं कि कुछ गाने ढूंढ पाना सच में काफी मेहनत वाला काम था। आखिर ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके इतने सारे अच्छे गाने हैं? मैं बताती हूँ। आज जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो म्यूजिक की दुनिया के दो जिस्म एक जान है। जब ये दोनों मिल जाए तो गाने तो हिट होने ही हैं। मैं बात कर रही हूँ इंडियन सिनेमा के एवरग्रीन म्यूजिकल डुओ आदि बर्मन और किशोर दा की। इस जोड़ी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक क्लासिक हिट्स दिए। एक साथ इन दोनों ने 165 मूवीज की हैं। लेकिन इस सबकी शुरुआत कैसे हुई थी? बर्मन दा और किशोर दा की दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। कुछ ऐसे थे हमारे आरडी बर्मन और किशोरदा की दोस्ती, जैसे मानो इन दोनों को किसी लड़की की जरूरत नहीं थी। एक दूसरे से ही प्यार किया करते थे, एक दूसरे के ही साथ में दिन और रात बिता लिया करते थे। आपको पता है इनकी दोस्ती कैसे हुई थी? हुआ कुछ यूं कि एक दिन बर्मन साहब कुछ रिकॉर्डिंग के लिए, एक फिल्म के किसी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए एक स्टूडियो में गए थे। उसी स्टूडियो की दीवार के ऊपर बैठ करके, यानी कि एंट्रेंस पे जो गेट के पास की दीवार होती है, उसके ऊपर बैठ करके एक आदमी हर एक इंसान को इमिटेट कर रहा था। जो भी वहां से गुजर रहा था उनकी नकल उतारे जा रहा था। बर्मन साहब अंदर ही जा रहे थे और वो आदमी दीवार से कूद कर स्टूडियो में जा पहुंचे। जो जो गाना गा रहे थे बर्मन दा, उसका सत्यानाश करके वो खुद उस गाने को गाने लगे। जब बर्मन साहब ने पूछा कि कौन है ये आदमी, तब कहा किशोर दा ने कि मैं अनाथ हूं, मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता, प्लीज एक चांस दे दो, मुझसे भी एक गाना गवा लो। आरडी बर्मन साहब ये सुनने के बाद दिल खोल के हंसे कि वो दीवार वाला जो आदमी है वो और कोई नहीं बल्कि अशोक कुमार जी का छोटा बेटा किशोर कुमार है। और बस वहीं से हमारे बर्मन साहब और किशोर दा की ये जो दोस्ती की शुरुआत हुई, पूरी जिंदगी चलती चली गई। बर्मन साहब ने ये हमेशा माना कि किशोर दा वॉज द बेस्ट सिंगर बॉलीवुड एवर हैड। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ बर्मन दा और किशोर दा की ही नहीं थी, इसमें एक तीसरा इंसान भी था। कौन था इनके ग्रुप का वो तीसरा इंसान, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। तकदीर लिखने वाले एक एहसान करते, मेरे दोस्त की तकदीर में एक और मुस्कान लिखते। ना मिले कभी दर्द उनको, तू चाहे तो उसकी कीमत में मेरी जान लिखते। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जोड़ी के बारे में जो कि एक दूसरे के नाम अपनी जान कर सकते थे, यानी कि आर डी बर्मन जी और किशोर कुमार। जैसा मैं कह रही थी कि इन दोनों की दोस्ती के तो चर्चे आज तक भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली सिर्फ ये दोनों ही नहीं थे, बल्कि इनकी शरारतों में, इनके गानों में एक और शख्स भी हमेशा हुआ करते थे हिस्सेदार, और वो कोई और नहीं बल्कि आशा भोसले जी थी। आशा भोसले जी जो कि किशोर दा की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। किशोर दा खुद कहा करते थे कि आशा भोसले जी से ज्यादा अच्छा दोस्त कभी उन्हें मिला नहीं, और आशा भोसले जी जो कि बर्मन साहब की पत्नी हुआ करती थी, तो इन तीनों का मानो एक ग्रुप सा बन गया था। हर जगह जाकर के, हर फिल्म मेकर से जाकर के ये तीनों साथ में मिला करते थे। एक समय ऐसा भी आया था जब लता जी ने खुद आर डी बर्मन जी को कहा था कि तुम तीनों के कुछ ऐसी मिली भगत सी हो गई है कि तुम मुझे तो भूल ही गए हो। उस पर किशोर दा ने कहा था कि मुझे आपसे डर लगता है दीदी, इसलिए आपके साथ में मुझे काम करना पसंद नहीं है। लता जी को ये बात थोड़ी सी खटकी जरूर होगी, लेकिन ये जानते हुए कि किशोर दा तो जो मन में आता है वो कहते हैं, पर मजाक

में कहते हैं, कुछ मीन नहीं करते हैं, यही मानते हुए शायद लता जी ने इस बात को जाने दिया होगा। तो चलिए, इतनी बात हो ही गई है इनकी दोस्ती की, तो सुनाते हैं आपको अगला गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर सेलिब्रेटिंग किशोर दा और

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आज के एपिसोड में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आरडी बर्मन और किशोर कुमार को साथ में। बताइए, ये दोनों शख्स अलग अलग ही इतने ज्यादा बड़े म्यूजिशियंस एंड कंपोजर्स और सिंगर रहे हैं, तो इनको साथ में मिल करके यहाँ पर हम पेश कर रहे हैं, तो आज का एपिसोड तो बड़ा कमाल है। यहाँ पर बर्मन साहब के बारे में, वंशम दा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि अलग अलग चीजों से अलग अलग तरीके से म्यूजिक बनाना इन्हें बहुत पसंद था। चाहे वो खाली ग्लास हो, खाली बोतल हो, चम्मच से निकाली हुई आवाज हो, दांत के किटकिटाने की आवाज हो, रेत के गिरने की आवाज हो, या फिर सिर्फ बांस की एक लकड़ी से निकाली हुई आवाज हो, किसी भी चीज से म्यूजिक बनाना तो कोई पंचम दा से सीखे। लेकिन क्या आपको पता है कि पंचम दा ने एक बार एक तोहफा दिया था किशोर दा को, और उस तोहफे के कारण इन दोनों ने एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनाया था। बैठ करके एक महफिल जम गई थी। ये तोहफा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ये तोहफा एक एक्सपीरियंस था। क्या था ये तोहफा और कैसे इस तोहफे के कारण इन दोनों ने मिल करके एक फिल्म का म्यूजिक दे दिया, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

0: खफा थे,
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं।
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आ

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। कुछ ही देर पहले मैं बात कर रही थी यहाँ पर एक तोहफे के बारे में जो कि पंचम दा ने किशोर दा को दिया था। क्या हुआ, एक बार यूं ही खुश होकर के पंचम दा ने एक बेली डांस शो अरेंज किया था एक्सक्लूसिवली किशोर दा के लिए, सिर्फ और सिर्फ किशोर दा देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। पेमेंट भी हो गए थे लेकिन किसी कारण से डांसर्स आए ही नहीं, और इसका भी फायदा हुआ क्योंकि बर्मन साहब और किशोर दा साथ में बैठे हो, करने को कुछ ना हो और अच्छा म्यूजिक ना बने, ऐसा हो सकता था क्या? बेली डांसर्स आए नहीं, शो हुआ नहीं और हमारे पंचम दा और किशोर दा ने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया, और यूं ही बैठे बिठाए फिल्म रोमांस का म्यूजिक इन दोनों ने बना लिया था। बताइए, यूं ही ऐसे ही एक शाम को बैठे हुए अगर गाने बन जाए तो इनसे ज्यादा बेहतर और कोई सी जोड़ी हो सकती थी क्या? बर्मन साहब यानी कि हमारे पंचम दा और किशोर दा की इसी दोस्ती के नाम अगला गाना सुनाएंगे आपको, और यही कहूंगी मैं इन दोनों के नाम के कुछ रिश्ते वक्त की तरह होते हैं, बीत तो जाते हैं लेकिन याद बनकर रह जाते हैं। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

कैसा लगा आपको ये एपिसोड? चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से, कहानियां और आपके पसंदीदा गानों के साथ।

0: अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजनगर विधानसभा उपचुनाव प्रचार आज का अंतिम दिन है। मतदान से पहले सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गई हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास देश की स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य के साथ कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अरे भाई साहब समोसा मिलेगा?
1: शट अप कर जाओ।
2: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो?
3: अरे भूल गए भूल गए भूल गए, अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार।
2: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
3: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
2: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
4: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई, पीने का पानी और ले आ।
2: ये लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
3: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
4: जल है तो कल है।

0: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर?
2: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
7: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
0: मोहित मेरा इस्तीफा।
8: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
0: सॉरी यार,
8: काम कीजिए आप लोग।
7: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
9: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
10: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
11: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
12: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
10: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
12: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
13: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
10: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
13: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
14: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
15: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
14: सॉरी बेबी।
15: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तभी दोनों के लिए चल रही है ना। अगर ना तो

0: श्रोतियो रेडियो गुंजन तो तुसी इस वेले सुन रहे हो पंजाबी गीत ते आज मैं है तुहाडे नाल तुहाडी अपनी दोस्त ते आओ सुनदे आ एक होर पंजाबी गीत।
1: वैर बुरा हुंदा ए नेहोले सप दा दरा मूरे रखिए ना बूटा अक दा सत विच खड़के नी उच्चा बोली दा पता

इस वेले तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीत रेडियो गुंजन धर्मशाला ते पेश कर दिया एक होर पंजाबी गीत। तुसी इदा ही बने रहे हो साडे नाल यानी रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल।

श्रोते इस वेले तुसी इंजॉय मान रहे हो पंजाबी गीतां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तो जिथे असीं तुहानू सुनवा रहे हां वख-वख गायकां दी बोली विच गाए वख-वख पंजाबी गीत।

रेडियो गुंजन धर्मशाला के सारे श्रोतियां नूं साडे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल। तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन, जिथे तुहाडे लई हरेक दिन लैके आउंदे ने मनोरंजन। गल्लां बातां ते थोड़ियां असीं घट करांगे, लेकिन तुहानूं हुण सुणवांगे इस वेले पंजाबी गीत।

अज दे सफर नूं तुसी तय कीता अपने दोस्त सुमन दे नाल ते हुण समां हो गया है तुहाडे तों विदा लेण दा। अगली बार फिर तो नवे पंजाबी गीतां राहीं तुहानूं मिलांगे। उदों तक तुसी रखियो अपना ख्याल।

0: समोसा मिलेगा।
1: शट अप कर जाओ।
2: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
3: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार।
2: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
3: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
2: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
4: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले
2: आया, ये लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
3: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
4: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
0: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
2: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
6: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
0: मोहित मेरा इस्तीफा।
7: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
0: सॉरी यार।
7: काम कीजिए आप लोग।
6: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
8: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
9: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
10: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
11: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
9: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता।
11: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
12: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
9: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
12: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
13: मम्मी वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
14: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
13: सॉरी बेबी।
14: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो, मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तभी दोनों के लिए चल रही है ना। अगर ना तो

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक ता श्रोताओं कर दे ने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने तोहा सारे ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी

तोहां सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तिने तोहां सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम जग गए तिने सुन देनी कोर प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला से कने तो हाँ सारे ट्यून किते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है माटी दी महक श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। इन्हें तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम चगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने अशो तो बढ़ दिन कार्यक्रम च आगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तने तो हां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम चल गए तने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला थे ना रेडियो गुंजन धर्मशाला थे कने तो हाँ सारे ट्यून किते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है माटी दी महक श्रोताओं सुन दे एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने हैं अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। इन्हें तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी भी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तने तो हां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम चल गए तने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक कहाँ श्रोता अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही तो हाँ सारे ने बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने।

0: समोसा मिलेगा।
1: सटअप कर जाओ।
2: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
3: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार।
2: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
3: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
2: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
4: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले
2: आया,
3: ले लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
4: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
5: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
6: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
5: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
6: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
7: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
8: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
1: मोहित मेरा इस्तीफा।
0: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
8: सॉरी यार,
0: काम कीजिए आप लोग।
8: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
9: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
10: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
11: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
12: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
10: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
12: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
13: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
10: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
13: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
14: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
15: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया, एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
14: सॉरी बेबी।
15: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो, मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तंगी दोनों के लिए चल रही है ना। अगर ना हो तो

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप है इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: सतप कर जाओ।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
0: चुप यार।
1: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
3: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कर।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले
2: आया,
3: ले लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
4: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
5: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
6: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
5: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
2: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
7: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
0: मोहित मेरा इस्तीफा।
1: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
0: सॉरी यार,
1: काम कीजिए आप लोग।
7: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
8: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
9: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
10: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
11: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
9: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
11: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
12: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
9: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
12: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
13: मम्मी वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
11: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
13: सॉरी बेबी।
11: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तंगी दोनों के लिए चल रही है ना। अगर ना तो

नमस्ते नमस्कार सभी मेरा प्यार भरा नमस्ते। हाँ सचिन कपूर हाजिर बुआ कार्यक्रम लेकर हिंदी अपनी गपा बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन। कैसे तो है सब, उम्मीद करनो तो सब ठीक बुने खरे बुने हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त भूणे हिन। और हमेशा बोल लो की तुम्हारा सभी पहला दोस्त गया सो तुम्हारा अपना शरीर, और अपने शरीर जो हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रखने वास्ते बिल्कुल वर्कआउट तो करना ही चाहिए सो तो और जरूर करूंगा है ना। चलिए जी, वर्कआउट भी जरूरी है लाइफ में और पिटारा आंसू गीता रखी आंसू जरूर खोलना। आइए जी सभी पहले आगाज कर लेंदेन कार्यक्रम रा, पिटारे थो गीत कटी लेंदेन और हुनंदेन तुसुओ ये गीत।

बहुत प्यारे दे गीत श्रोतों। और चलिए अब कार्यक्रम मंच असु गल करनी है आज श्रोतों एजुकेशन रे बारे में। जी बिल्कुल, आजकल जो खास करिंदे बच्चे ना कजो की फोन रा बड़ा बड़े क्रेज है और जहने लॉकडाउन लग रो थो श्रोतों तहने ऑनलाइन क्लास अगेन सो लगना शुरू हुई। तथों बाद किया सो बच्चे का ज्यादा ही क्रेज किया सो फोन नो लेकर ही भुजगो बच्चे ज्यादा ही फोन जो लेकर ही कहन सो बड़े सीरियस नजर इंदे न। मतलब की बस तिन्यो फोन चिंदा खंदे फोन उड़दे फोन सुनदे फोन और फोना मंज एजुकेशन किया सो चलो तहने तब हालात ऐसे थे कि करना पे। लेकिन आज हालात ठीक नींद है, आज भी बच्चे कहन श्रोतों सो एजुकेशन री किनारी ध्यान ना करी करी किया सो फोन किनारी ध्यान कर देन। ताजा सो इस टॉपिक में जानना, इस कार्यक्रम में जानना कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है असु वास्ते। आइए श्रोतों बिचा बिचा असु गीतरा पिटारा गया सो भी खुलता है रहना है हुन देने गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपने का पगान सो इस वक्त बिल्कुल लाइव चल रही तुम दे रेडियो सेट में बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन सभी होने वाले रा सभी श्रोतागण रा आइए श्रोतों कार्यक्रम जो होगा बढ़ेंदन और हेरा शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण खासकर युवा वास्ते बच्चे वास्ते और आसू वास्ते भी हम बोलना चाहूँ क्यों जो की पढ़ाई लिखाई री कोई उम्र ना मुंदे जस उम्री है तुसू लगा के असू शिक्षा के असू ग्रहण करना चाहिए या हगू पढ़ना चिंदा तो सो तुह कंटिन्यू कर सकते हैं शोतो शिक्षा के असो इम्पोर्टेंट भी है असू सब भी वास्ते शोतो है ना एक ज्ञान कौशल और सही सोच के असो प्रदान कर दे हा शोतो जस तो व्यक्ति जो बेहतर नौकरी व अवसर भी मिलता है फैसला लेने में क्षमता बढ़ दे है व्यक्ति री है तुस कोई भी फैसला लेना था तुम दे जो क्षमता सो बड़ी गाने हा शोतो है ना तुम दे दायरा के असो बड़ी गाना हा और समाज में सक्रिय भूमिका किया सो भी एजुकेशन निबंध हा शोतो आइए कार्यक्रम मंच एंजॉय कर दें गीत

और सचिन का पूरा कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही और कार्यक्रम मंच तो सब बन रहे बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन के फिर सभी होने आ रहा आइए तुम कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो लेकर चल दे और कार्यक्रम मंच गल बात चल रही आज एजुकेशन जो लेकर शिक्षा जो लेकर शिक्षा के शोतों सो अंधविश्वास और भेदभाव जो खत्म कर दे जो की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंधविश्वास में भी बहुत सारे मनो के अंश हो रहे भेदभाव में भी जाति जो लेकर के अंश भी आज नी रेट में बड़े सारे मनो के सुरेंद्र ने जाए सो यूथ ही को ना वो है ना सुरेंद्र हा एजुकेशन इन चीजों भी खत्म कर दिया नागरिक जो त्यारे अधिकार रे प्रति की आसो जागरूक कर दिया त्यारे कर्तव्य रे प्रति की आसो नागरिक जो आम नागरिक जो की आसो जागरूक कर दिया शिक्षा शोध और राष्ट्रीय आर्थिक विकास माँ भी किया सो योगदान कर दिया सोहा शिक्षा शोध तेविलिया एजुकेशन कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट आसो सभी वास्ते है जो बच्चे और जो युवा सोचते कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है नौकरियां लगेगानी यही है बुझगाना नौकरी बेशक लग अच्छा लेकिन एजुकेशन के श्रोतों से कंटिन्यू करना चाहते हैं बड़ा विकास बुंदा अपना समाज रा भी बुंदा अपना भी बुंदा परिवार रा भी बुंदा है श्रोतों कार्यक्रम जो हगू लेके चल देन खोल देन पिटारा कोड और हुनन देन ए प्यारा देगी तुसुओं।

श्रोता एफ एम 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा हूँ सचिन कपूर हा। व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा रा महत्व श्रोतो ज्ञान और कौशल शिक्षा ज्ञान और कौशल प्रदान करती है श्रोतो जत्थो व्यक्तिगत जीवन में क्या चुनौती सामना करने भी किया सो समस्या का समाधान करने में सक्षम बुंदा है इंसान श्रोतो है ना। बेहतर जीवन मिलता है श्रोतो शिक्षित मनु जो बेहतर वेतन वाली नौकरी मुड़ी पंदी ने है ना और त्यारा जीवन स्तर किया सो सुदृगंधा। अगर कोई गरीब बारा बच्चा श्रोतो सो बेहतर पड़ेगा या कोई भी फैमिली में बच्चा जो बेहतर पड़ेगा तो सिर अपना जीवन भी बेहतर गुणा सेरे सोगी सोगी सेरे परिवार रा जीवन किया सो भी बेहतर बुचिगंधा श्रोतो। और अगर तो बेहतरीन नौकरी तो पिले फिर इतो बढ़िया क्या बोल सकता सुकून री सारी उम्र तुम दे निकलनी है। ये गल्ला तो और किसी भी प्रोग्राम में भी ना होने जो मोलना श्रोतो या किसी भी रेडियो स्टेशन में ना होने जो मोलना सिर्फ तुसो रेडियो गुंजन में होने जो मोल कर दी और खासकर अपनी गद्याली भाषा हूं उन्हें मुड़ कर दी ठेरा मतलब ये सीधा तुंदे दिला अंदर की आई गल बसु कर दे हुने आत्मविश्वास और स्वतंत्रता री जानकारी मिलते हैं। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा कर दे हा श्रोताओं और अपने जीवन रे बारे के सो महत्वपूर्ण निर्णय लेने वास्ते स्वतंत्रता देंदे हा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हर किसी इंसान वास्ते हर किसी व्यक्ति वास्ते। तो आइए श्रोताओं कार्यक्रम जो भरंदन थोड़ी करी और हगू और मजे चु कर देना आइए जी फराटी फराटी सोगी सोगी लंदन वंदनी गीत।

श्रोतों कार्यक्रम सचिन कपूर सो के हुनु गर्दन हिंदी अपनी गप्पा बहुत बहुत स्वागत है मौके फेरी सभी हुने आले रा हार्दिक अभिनंदन है ये जी कार्यक्रम जो लेकर ही चल दो थोड़ा करी और हगो सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा रे महत्व श्रोतों में बड़ा इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है समाज रा विकास जी बिल्कुल शिक्षा के आसो समाज जो विवेक समझ और संपूर्ण थो भरे दिन देहा जत्थो के आसो समाज रा विकास मुंदा और समाज रा विकास किया सो बहुत अहम आ बहुत जरूरी है श्रोतों नागरिक जागरूकता श्रोतों नागरिक जो त्यारे अधिकार है त्यारे कर्तव्य है त्यारी जिम्मेदारी री भावना सिखंदा है तिन्यो समाज में सक्रिय और उपयोगी भूमिका के करे निभाने सो सिखंदा है नागरिक जो जाति रे प्रति जागरूक करता है भेदभाव के असो खत्म करता है श्रोतों नागरिक अंदर की आक इंसान तहर घरे पैदा हुंदा लेकिन आशोतो नागरिक अंदर शिक्षा के आसो इंसानियत भी जगन दे हा दरिंदगी जो के आसो शिक्षा खत्म कर दे हा आशोतो तुसो हो समझ सब कुछ बन दे हा बरहाल कार्यक्रम जो लेके चल दें थोड़े करे और हगू और हुन दें ये प्यारे दिया गीत

सो तो आज के कार्यक्रम में तो है सभी है एजुकेशन के बारे जितना भी है अक्की घंटे दस सकते थे सो है तू सो दस हेरा शिक्षा के एजुकेशन के सो सकारात्मक योगदान है तुंदे जीवन में सकारात्मक सोच है तुंदे जीवन में और ऐसा सोच जो बढ़ाना तुंदा काम हा कसकी हो रही रहा काम नहीं कसो की पढ़ना तो तू सो पहना है सोता हूँ व्यक्ति जो जिम्मेदार और नैतिक सिखंदे हा शिक्षा ताकि सो समाज में सकारात्मकता लेकर सकारात्मक सोच किया सो लेकर सकारात्मक योगदान किया सो व्यक्ति दिया जो वेल एजुकेटेड हा। चलिए श्रोताओं तो आऊँ सचिन कपूर ले लेनू तो सुथ इजाजत गद गदे वाला अच्छा नो माँ बुढ़े री सेवा कर दे रहे और एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सो एजुकेशन जो कैरी ऑन करा एजुकेशन जो अपू सो गे रखा श्रोताओं और पढ़ते चलना। नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। आपातकालीन वाहनों को रास्ता ना देने पर हिमाचल प्रदेश में 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। APL परिवारों को अब राशन डिपो से 13 किलो आटा मिलेगा। शिमला स्मार्ट सिटी की पार्किंग व्यवस्था में बदलाव, अब ठेकेदार नहीं बल्कि लोग होंगे हकदार। हिमाचल को केरल से करीब 14 रुपए प्रति यूनिट से अधिक दर पर बिजली मिलने का समझौता। अक्टूबर में रोजाना 900 मेगावाट तक बिजली मिलने की संभावना। बच्चों की देखभाल के लिए अब पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पेड़ नेतृत्व पितृत्व अवकाश की सिफारिश की। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि सड़क पर आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दें और उन्हें रास्ता देने में किसी तरह की लापरवाही न बरतें। यदि कोई वाहन चालक आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नियम का पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी बार नियम तोड़ने पर 6 माह तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों सजा का प्रावधान बताया गया है। पुलिस का कहना है कि एम्बुलेंस, समकल और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए समय पर रास्ता मिलना बेहद जरूरी है। कई बार रास्ता न मिलने के कारण मरीज को अस्पताल पहुंचने में देरी हो सकती है और किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। पुलिस ने वाहन चालकों को निर्देश दिए हैं कि जैसे ही सड़क पर कोई आपातकालीन वाहन दिखाई दे उसे सुरक्षित तरीके से रास्ता दें और अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे करें। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एपीएल परिवारों को मिलने वाले राशन के कोटे में बढ़ोतरी की गई है। नई व्यवस्था के तहत एपीएल परिवारों को अब 12 किलो की जगह 13 किलो आटा वितरित किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कोटे में ये

बढ़ोतरी की है। विभाग के अनुसार महंगाई और रसोई के बढ़ते खर्च को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे प्रदेश के एपीएल परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को नई व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को बिना किसी देरी के संशोधित राशन कोटे का लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस फैसले से उन परिवारों को विशेष रूप से राहत मिलने की उम्मीद है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अपने घरेलू राशन की जरूरत पूरी करते हैं। शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत पार्किंग व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। अब पार्किंग व्यवस्था में केवल ठेकेदारों का ही अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी पार्किंग आवंटित की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार ऑकलैंड और टूटू में आए आवेदनों को मंजूरी दी गई है और सोमवार से पार्किंग का आवंटन शुरू होने की बात कही गई है। बताया गया है कि ऑकलैंड पार्किंग की क्षमता करीब 315 वाहनों की है, जबकि इसके लिए 230 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। पार्किंग के लिए आवेदन करने वाले लोगों के बीच पात्रता के आधार पर आवंटन किया जाएगा। नई व्यवस्था में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। इससे उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें अपने वाहनों को पार्क करने के लिए लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम की ओर से पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से पार्किंग का बेहतर संचालन हो सकेगा और स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए केरल के साथ बिजली खरीद का समझौता किया है। समझौते के तहत हिमाचल को अक्टूबर महीने में रोजाना करीब 900 मेगावाट तक बिजली मिलने की संभावना है। केरल के साथ पीक लोड आवर्स में बिजली खरीद का समझौता हुआ है। हिमाचल में बिजली की मांग बढ़ने के दौरान अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न राज्यों और परियोजनाओं से बिजली की व्यवस्था कर रही है। हिमाचल को विभिन्न बिजली परियोजनाओं से भी बिजली का हिस्सा मिल रहा है। प्रदेश सरकार अपने हिस्से की बिजली दूसरे राज्यों को बेचती भी है, लेकिन जरूरत के समय बिजली खरीदने की स्थिति भी बनती है। बिजली की दर को लेकर केरल के साथ हुआ समझौता 14.5 रुपए प्रति यूनिट से अधिक बताया गया है। ये समझौता पीक लोड के दौरान बिजली की जरूरत को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में बिजली की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखना और मांग के समय बिजली की कमी से बचना है। बच्चों की देखभाल को लेकर अब पिता की भूमिका को भी महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र में पुरुष कर्मचारियों के लिए पेड़ पितृत्व अवकाश देने की सिफारिश की है। आयोग ने निजी क्षेत्र में पुरुष कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 30 दिन की पितृत्व छुट्टी देने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही आयोग ने मातृत्व अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी मजबूत करने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि बच्चों की देखभाल केवल मां की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पिता की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सिफारिशों में ये भी कहा गया है कि बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों को नौकरी और वेतन से जुड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े। आयोग ने सरकारी और निजी क्षेत्र में बच्चों की देखभाल से जुड़े नियमों में समानता लाने पर भी जोर दिया है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिससे वे अपने छोटे बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकें। रिपोर्ट में बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए कामकाजी व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने की सिफारिश भी की गई है। साथ ही माता पिता को अपनी परिस्थितियों के अनुसार छुट्टी लेने की सुविधा देने पर जोर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं के वितरण के क्षेत्र में तेजी से बदलाव की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों और पहलों को लागू करते हुए प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शुरू किए गए इन सुधारों का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। नई डिजिटल व्यवस्थाओं और मौजूदा प्रणालियों में किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और विभाग अब महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को पहले की अपेक्षा अधिक तेज, व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से संचालित
कर पा रहे हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओं आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन, लेकर हाजिर हुई हूं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने।

इस वक्त आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और लुत्फ उठा रहे हैं सुहाने से गीतों का, यानी कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का।

गीत सुहाने नए पुराने का संगम लेकर हाजिर हुई है आपकी जानी पहचानी सी दोस्त सुमन। तो आइए चलते हैं सुरों की दुनिया में और प्ले करते हैं आपके लिए ये गीत।

गीत सुहाने नए पुराने का संगम लेकर हाजिर हुई है आपकी जानी पहचानी सी दोस्त सुमन। तो आइए चलते हैं सुरों की दुनिया में और प्ले करते हैं आपके लिए ये गीत।

0: समोसा मिलेगा।
1: सटअप कर जाओ।
2: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
3: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार।
2: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
3: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
2: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
3: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
2: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और लिया?
3: ये लो भैया पानी।
2: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
4: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
5: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
6: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
5: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
6: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
7: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
8: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
9: मोहित मेरा इस्तीफा।
10: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
9: सॉरी यार,
10: काम कीजिए आप लोग।
8: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
11: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
12: बोला था ना तुझे कि क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
13: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
14: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
12: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
14: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
15: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
12: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
15: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
16: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
17: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
16: सॉरी बेबी।
17: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तंगी दोनों के लिए चल रही है ना।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शो, तो इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। संडे की शाम में सभी श्रोताओं का स्वागत है और कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम ढेर सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आपके साथ साझा करेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में प्यारे प्यारे गीत। तो क्यों ना श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापिस आ चुके हैं लेकर ढेर सारी जानकारियां, और इन्हीं जानकारियों के साथ आज के विचार की बात करते हैं। श्रोताओं, तो खुद को हमें एक सोने के सिक्के जैसा बनाना है जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम ना हो। बिल्कुल सही बात, अपनी कीमत का हमें खुद भी पता होना चाहिए कि हमारी कीमत क्या है। कई बार क्या होता है कि हम खुद को ये समझते हैं कि अरे हमारे में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, बस एक छोटे से इंसान हैं और कुछ नहीं है। लेकिन अपनी वैल्यू का हमें खुद पता होना चाहिए कि हम सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि हम इंसान हैं, और इंसान का जीवन हमें बार बार ज़िंदगी में मिलता भी नहीं है। एक बार मिला है तो इसे अच्छे से जीना है, अच्छे से इंजॉय करना है, और अपनी कीमत को पहचाना है और खुद को समझना है कि हम किसी सोने से कम नहीं हैं। वैसे भी अगर दुनिया में श्रोताओं देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान है, दुखी हैं। हम उन सबसे बहुत ही किस्मत वाले, बहुत ही अच्छे हैं कि भगवान ने हमें अच्छा इंसान बनाया है, अच्छा शरीर दिया है, अच्छी आंखें, अच्छा नाक, अच्छा मुंह और अच्छी सोच समझ, और उसके साथ साथ शिक्षित किया है ताकि हम जो है समाज में एक अच्छे इंसान बनकर रह सके। और बहुत कुछ हमें दे चुके हैं ऊपर वाले, और कुछ अगर हम जीवन से चाहते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी मेहनत, और जब हम करते हैं मेहनत तो मेहनत का फल भी हमें मिलता है। तो मेहनत ज़रूर अपने जीवन में करते जाए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी खुशहाल और कितनी खूबसूरत सी लगती है। तो ये कार्यक्रम को भी थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, मिले जुले गीतों का संगम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आज के दिन की बात करें तो श्रोताओ, आज है 4 अक्टूबर। देखिए श्रोताओ, अक्टूबर महीना चल पड़ा है और कैसे इतना समय बीत गया पता ही नहीं चला। कभी हम सोचते हैं कि अरे कब साल ख़त्म होने को आया और पता ही नहीं चला। दिन महीने साल यूं ही बीत जाते हैं और कुछ हमें अंदाज़ा ही नहीं रहता। ये सब व्यस्त जीवन शैली का ही तो फ़र्क है। व्यस्त जीवन शैली के चलते समय का अंदाज़ा ही नहीं लगता है कि कब समय निकल जाता है। बस सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है। यहाँ थोड़ा सा उल्टा लग रहा है कि बरसात के बाद सर्दी आ गई है, गर्मी सर्दी और बरसात। और अब देखिए सर्दियों के दिन चल पड़े हैं और शुरुआत हो चुकी है। और सर्दियों के दिन जब आते हैं तो थोड़ा सा हम सभी को रखना पड़ता है अपना ध्यान और ख्याल। खैर, ध्यान भी रखना है हमें और अपनों का ख्याल भी रखना है, क्योंकि जब तक हम अपनों का ध्यान और ख्याल नहीं रखते हैं तब तक जो है ज़िंदगी थोड़ी स्मूथ नहीं होती है। क्योंकि अगर हम कहीं बीमार पड़ जाए तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। और जब हम स्वस्थ रहकर इस जीवन को एंजॉय करते हैं तो परिवार भी खुशहाल रहता है और ज़िंदगी बहुत ही जो है नॉर्मल सी चलती है। तो थोड़ा सा अपना और अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं फिर से कार्यक्रम की ओर और सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में हम फिर से वापिस आ चुके हैं लेकर ढेर सारी जानकारियाँ, और इन जानकारियों में हम बात करेंगे बदलते मौसम के बारे में कि बदलता मौसम हमें किस तरह से परेशान करता है और किस तरह से बहुत सारी दिक्कतें भी हमारे लिए लेकर आता है। बदलते मौसम में संक्रमण और बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारी सावधानियाँ ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो हम अगर खान पान की बात करें तो ताज़ा भोजन हमेशा घर पर बना होता है और हमें वही खाना चाहिए। हमेशा घर का बना ताज़ा और गर्म भोजन आजकल के समय में, जैसे आने वाले समय सर्दियों की बात करें, तो खाना चाहिए। ठंडा खाना खा के भी कई बार हम बीमार हो जाते हैं। बासी और खुले में रखा हुआ भोजन से बिल्कुल हमें परहेज रखना चाहिए। और पानी की बात करें श्रोताओं, तो पर्याप्त पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर पीना है, और संभव हो तो, जैसे सर्दियों में बहुत सारे हमारे श्रोताओं की ये शिकायत रहती है कि सर्दियों में पानी नहीं पिया जाता है, बड़ा ठंडा लगता है, दांतों को लगता है, या फिर पानी पी के ज़्यादा ठंड लगती है। तो श्रोताओं, सर्दियों के दिनों में हम गुनगुना पानी पी सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो वर्किंग है, जो काम पर जाते हैं, या कहीं खेतों में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है कई बार, या सफ़र पर जाना पड़ता है। तो आजकल हम सभी के पास जो है वाटर बॉटल रहती है, और बाज़ार में बहुत अच्छी अच्छी वाटर बॉटल आई है जिसमें पानी गर्म करके डाले तो काफ़ी समय तक पानी जो है पीने लायक बना रहता है। तो हम वो बॉटल ले सकते हैं, जहाँ भी कहीं जाना हो तो अपना पानी उसमें डाले और थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारा जो शरीर है हाइड्रेट रहता है, पानी की नमी शरीर में बनी रहती है, दूसरा विषैले पदार्थ शरीर से निकलते रहते हैं, और चेहरे की बात करें तो श्रोताओं, चेहरा भी निखरा रहता है। देखिए श्रोताओं, अगर हम बात करें अपनी, तो जितना हम पानी पिएंगे उतना हमारे शरीर से गंदगी निकलती है और उतना ही हमारा शरीर और स्वास्थ्य भी सही रहता है। अब इम्यून सिस्टम की बात करें तो अपनी डाइट में विटामिन सी से

अचार खाया जाता है और सौंठ के रूप में भी हम इसे इस्तेमाल सर्दियों के दिनों में करते हैं, तब भी हमें फ़ायदा देता है। हल्दी वाले दूध की श्रोताओं बात करें तो हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जब भी कभी हमें कहीं चोट लग जाती है तो सबसे पहले हमारे बुज़ुर्ग ये बताया करते थे कि पेशेंट को जल्दी से गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध देना चाहिए ताकि उसके अंदर के जितनी भी तकलीफ होती है, जख्म हो या कोई जो है अंदरूनी चोट लग गई हो, तो उससे भी उसे राहत मिलती है। तो खैर श्रोताओं, राहत तो दुख दर्दों से हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं उनको ज़रूर मिलती रहे, उनकी ज़िंदगी खुशहाल रहकर वो व्यतीत करें और खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। ज़िंदगी तभी खुश रह सकती है जब ज़िंदगी में हम अपनी पसंद के काम करें और साथ ही साथ सुनते रहे प्यारे प्यारे गीत। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आप तक पहुँचा रहे हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को, तो एंजॉय करें इस

तो इस समय आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आज के कार्यक्रम में आपके साथ आपकी जानी पहचानी सी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो हम बदलते मौसम की बात कर रहे थे श्रोताओं, तो बदलते मौसम में बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम जीवन शैली और पहनावे की बात करें तो तापमान के उतार चढ़ाव को देखते हुए हल्के गर्म कपड़े पहने या लेयरिंग करें ताकि शरीर पर अचानक ठंड ना लगे। आज

की बात करें तो आजकल जब हम सुबह और शाम को कहीं सफ़र करते हैं, खासकर अगर दो पहिया वाहन की बात करें, तो हल्की फुल्की स्वेटर या जैकेट की भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि सुबह सुबह ठंड होती है, शाम को भी ठंड होती है, और पूरा दिन तो आपको पता है धूप लगी रहती है। कई बार हम पंखा भी चलाते हैं और चलाना भी पड़ता है, और थोड़ा सा इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एकदम हम धूप से आए और पंखा लगा ले तो उसमें भी हम बीमार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा शुरुआती मौसम भी हमारे लिए दिक्कत और परेशानी पैदा करता है, तो थोड़ा सा हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ नींद की बात करें, नींद हर व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी होती है। 7 से 8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद लें, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है मजबूत होती है, और शरीर को सक्रिय रखने के लिए रोज़ाना हल्की एक्सरसाइज या योग करें। श्रोता देखिए, अब जैसे सर्दियों के दिन आ रहे हैं तो बहुत सारे श्रोता ऐसे कहते हैं कि भी मन नहीं करता है कि सुबह सुबह जल्दी उठा जाए और योग या एक्सरसाइज की जाए। लेकिन श्रोता, अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा स्वस्थ रहें, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। और जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल ये होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और आजकल की जीवन शैली ऐसी है कि हम बड़े आरामप्रस्त हो गए हैं, घर से गाड़ी में बैठते हैं और अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, या कहीं भी रिश्तेदारी में जाना हो उनके भी गेट के अंदर गाड़ी लग जाती है तो आराम से हम पहुंच जाते हैं। चलने का हमारे पास समय नहीं होता है, और पहले के समय की बात करें तो घंटों पैदल हम लोग चला करते थे, जिससे हमारी जो है वॉक हो जाया करती थी। लेकिन अब चलना फिरना बहुत कम हो गया है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा खुद को समय ज़रूर देना है। कम से कम 1 घंटा खुद को समय दें, योग करें, एक्सरसाइज करें या वॉक करें। सर्दियों में शिकायत ये होती है कि हम वॉक करने नहीं जा सकते हैं। जिन्होंने जाना हो श्रोता, वो अच्छे से पैक होकर भी चले जाते हैं, और जब हम चलते हैं तो उससे भी हमारा शरीर जो है गर्म हो जाता है, और जब गर्म होता है तो खुद भी खुद गर्मी लगने लगती है और ठंड का आभास भी नहीं होता है। तो हमारी बात और जानकारियों के साथ फिर से कार्यक्रम में समय हो रहा है अंतराल का, लेते हैं एक अंतराल। अंतराल के ठीक बाद हम आपको

श्रोताओं, इस समय आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो कुंजन धर्मशाला और मैं हूं आज के कार्यक्रम में आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं उस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, गर्मी और उमस भरा मौसम लगभग खत्म होने वाला है और सर्दियों का थोड़ा हल्का फुल्का सा आगाज़ हम सभी जानते हैं कि हो चुका है। ऐसे मौसम में हम सभी को रखना होता है अपना ध्यान, और आयुर्वेद का भी मानना यही है कि बाहरी वातावरण का हमारे आंतरिक सेहत पर सीधा असर होता है। यही वजह है कि आयुर्वेद हमें सलाह देता है कि हमें थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए, सीजनेबल जो रूटीन होती है उसका पालन करना चाहिए ताकि बदलते मौसम में हम बीमार ना पड़ जाएं। और बीमार पड़ना वैसे भी किसी को अच्छा नहीं लगता है, हम चाहते हैं सभी कि हम स्वस्थ रहकर इस प्यारे से जीवन को एंजॉय करें, क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हमें आती हैं। एक तो रात भर नींद नहीं आती है, बुखार रहता है, खांसी रहती है, ज़ुकाम होता है, और आजकल की बात करें तो अगर किसी को ज़ुकाम हो जाए और वो कहीं बाहर चले जाए तो थोड़ा सा सारे परहेज़ करते हैं कि अरे इसे ज़ुकाम हुआ है, कहीं मुझे ना हो जाए, तो मास्क लगाकर जाना ही बेहतर रहता है। और जब मास्क लगाएं तो खुद को, अपने आप को, हमें ऐसा लगता है कि हम अलग ही दिख रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि कुछ भी खाने को मन नहीं करता है, मन करता है कुछ ना खाएं, सोए रहे, लेटे रहे, कुछ खाने को मन नहीं करता है, कहीं जाने को मन नहीं करता है, कुछ काम करने को मन नहीं करता है। तो अगर हम स्वस्थ होंगे तो हर काम करने को मन करता है, और बीमार पड़ जाएंगे तो हर काम से थोड़ा सा हम परहेज करना चाहते हैं। तो श्रोताओं, हम तो ऊपर वाले से, भगवान से, माता रानी से यही दुआ मांगते हैं, हमारे जो श्रोता हैं बिल्कुल स्वस्थ रहकर इस जीवन को जिए, इस जीवन में आए हैं तो बहुत सारे काम उनकी ज़िंदगी में हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं, उन ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। इसी स्वच्छता और आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ हम फिर से कार्यक्रम में बढ़ते हैं और आप सभी तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

0: सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी,
1: सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी।

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी है ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है।

0: तो इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में बदलते मौसम की हम थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे श्रोताओं। तो बदलते मौसम में पाचन तंत्र पर भी असर पड़ता है, इसलिए भारी मसालेदार और तरा उला भोजन खाने से थोड़ा सा हमें परहेज रखना है। भोजन में ताजे फल, हरी सब्जियां, दही, सलाद और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हम कर सकते हैं। हल्का और संतुलित आहार शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ बीमारियों से भी बचाया रखता है। तो आजकल के समय की बात करें तो आजकल हर किसी को कोई ना कोई दुख, रोग, बीमारी लगी ही हुई है। शुगर की बात करें तो हर किसी को शुगर आजकल है और चीनी खाने से थोड़ा सा परहेज हम सभी को करना चाहिए, चाहे शुगर है या नहीं है। कम चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं अपनी सेहत का ध्यान और ख्याल तो हल्का मीठा ले सकते हैं आप। और अगर शुगर पेशेंट है तो थोड़ा सा दूरी बनाकर तो आपको रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे डॉक्टर जो है हमें यही सलाह देते हैं कि हमें चीनी तो बिल्कुल नहीं खानी है, तभी हम श्रोता कहीं ना कहीं अपने शरीर में होने वाले रोग को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बीपी की बात करें तो हर किसी को बीपी प्रॉब्लम भी होती है, तो उसमें भी डॉक्टर हमारे ज़्यादा नमक खाने से या ऊपर से नमक का छिड़काव करने से मना करते हैं। कई बार क्या होता है, सैलड पर हम नमक डालकर खाते हैं, जिससे कि नमक हमारी सेहत के लिए सही नहीं रहता है। तो छोटे छोटे बातों का हमें ध्यान रखना है, तभी हम कहीं ना कहीं अपने शरीर में होने वाले रोगों से थोड़ा सा जो है उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ज़्यादा तला भुना डीप फ्राई चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। कभी कभार तो मन सभी का करता है, अगर डेली रूटीन की हम बात करें कि हम डेली रूटीन में ये चीज़ें ले रहे हैं, तो उनसे हमें थोड़ा सा अपना बचाव रखना होगा। इसके साथ साथ धूप से अगर हम बात करें तो धूप से भी थोड़ा सा परहेज रखना होता है। शुरुआती धूप तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन पूरा दिन अगर हम धूप में कहें कि बैठना है या अपने कामकाज करते रहे तो ज़्यादा धूप भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तेज़ धूप और गर्म हवाएं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। जैसे सर्दियों की धूप तो चलो फिर भी हम इंजॉय करते हैं, अगर गर्मियों की धूप की बात करें तो उसमें तो आजकल के समय की बात करें कि हम सभी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला रहता है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, धूप में काम नहीं होता है। और अगर अपने शरीर की बात करें तो टैनिंग हर किसी को हो जाती है, इस तरह की परेशानियाँ भी होती है। लंबे समय तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, हाइड्रेशन और त्वचा संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। काम करने से बाहर निकलना पड़े तो छाता, टोपी या सनग्लासेस का हम उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ हल्के और सूती कपड़े पहनकर ताकि शरीर को ठंडक मिल सके। ये गर्मियों की बात है और सर्दियों में आजकल तो हल्की ठंडी धूप होगी आने वाले समय में, तो उसमें तो हमें मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो मौसम के हिसाब से हमें अपने कपड़ों का चयन करना पड़ता है, मौसम के हिसाब से हमें कपड़े पहनने पड़ते हैं, तभी हम रह सकते हैं स्वस्थ। तो श्रोताओं, स्वस्थ तो हमें रहना है और इसी स्वस्थ रहने के साथ साथ थोड़ा सा कार्यक्रम एंजॉय करते हैं। कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: सारेगामा कारवां।

0: जी हाँ, शो तो अपने दोस्तों की, अपने अपनों की तस्वीर तो हमें दिल में रखनी ही पड़ती है, और अपनों की तस्वीर तो हमेशा दिल पे होती है। कभी आंखें बंद करें तो उनका चेहरा भी सामने आ जाता है। अपने होते ही इतने अच्छे और इतने प्यारे हैं, तो बातों का सिलसिला तो हमारा यूं ही चलता रहेगा। बातों के साथ साथ हमारी जो काम की बातें हो रही थी उन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं और बात करते हैं स्वच्छता की। शो तो गर्मियाँ हो या सर्दी हो या बारिश का मौसम हो, स्वच्छता का हमें बेहद ध्यान रखना पड़ता है। बैक्टीरिया और वायरल तेजी से फैलता है, इसलिए व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। खाने से पहले और बाहर से आने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। साथ ही साथ साफ और शुद्ध पानी का सेवन करें, स्वच्छता बरतें और संक्रमण बीमारियों से हम तभी बच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम कहें कि हाँ अभी सर्दी आ रही है, हमें नहाना नहीं है, तो श्रोतो सर्दियों का मौसम भी हो, नहा कर शरीर में एक ताजगी एक स्फूर्ति सी आ जाती है। और कई बार क्या होता है कि बीमार व्यक्ति भी हो वो नहा ले तो अपने आप को अच्छा महसूस करता है। कई बार बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है कि अरे बीमार है नहाना नहीं, अगर मन नहीं है वो बात अलग है, अगर आप नहा सकते हैं तो उन्हें नहा लेना चाहिए, नहा कर भी हमें अच्छा लगता है। तो श्रोताओ स्वच्छता बेहद ज़रूरी होती है। अपने नाखूनों की सफाई रखें, अपने अगर बाल की कटिंग करने की ज़रूरत है तो अपने बालों को ज़रूर कटवाएं, क्योंकि बड़े हुए बाल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अपने आप को अच्छा सा दिखने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। तो श्रोतो इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ आपको फिर से लिए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में। तो आइए फिर से सुनते हैं, इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये गीत।
1: फ्रॉम सारेगामा।

श्रोतो, इसी गीत के साथ साईं की साथ बजने को है और कार्यक्रम में समय हो रहा है समाचारों का। इसके लिए करें थोड़ा सा इंतजार।

0: महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है.
1: There are countries who are
2: उदाहरण है. वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं. इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ. दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना. यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का दृश्य आधार बताया है. नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं. श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास जरूरी है. उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है. नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए. महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी. केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया. श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेंगे. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे. इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा. मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है. तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया. मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी. इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं. असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा. भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को, पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है. पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की. उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा. इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा. एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है. इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए. समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया. भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा है. और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

श्रोताओं, समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारी बातचीत थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। आज के दिन की बात करें तो आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनिमल डे। हमारे पशु हमारे लिए बहुत ही अनमोल हैं और पशुओं से हम प्यार भी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इन्हें भी जान होती है। कई बार क्या होता है श्रोताओं कि हम बिना वजह से पशुओं को मारने लग जाते हैं, या उन्हें भगाते हैं, या डांटते हैं, डंडे से पीटते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा हम डरा सकते हैं लेकिन मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जान तो हर एक इंसान में बसती है, हर एक जानवर में जान होती है, कोई भी पक्षी हो उसमें भी जान होती है, उन्हें भी दर्द होता है, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डरा कर हम उन्हें भगा सकते हैं लेकिन चोट किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। तो बातें और जानकारियां कार्यक्रम में हम और भी आपके साथ करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला पैरा सा गीत। सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

शो तो इस समय आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला में एक श्रोताओं बात करें तो आज है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में जानवरों के कल्याण और अधिकारों में सुधार करना है। प्रथम आयोजन की बात करें तो इसकी शुरुआत जर्मन लेखक और पशु कल्याण कार्यकर्ता हेनरिक जिमरमैन ने की थी। अब पहला पशु दिवस 24 मार्च 1925 को बर्लिन जर्मनी में मनाया गया था और सन 1929 में इस आयोजन को 4 अक्टूबर के दिन पर स्थानांतरित कर दिया गया था। और 4 अक्टूबर की तारीख को जानवरों के संरक्षण संत असीसी के फ्रांसिस के पर्व दिवस के सम्मान में चुना गया था। दोस्तों तो जानकारियां और भी हम आपके साथ साझा करेंगे, फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोतो, ये प्यारा सा गीत आपने सुना। इसी गीत के साथ हम फिर से वापस आ चुके हैं अपने कार्यक्रम में, और थोड़ा सा हम जानवरों की बात कर रहे हैं, अपने पशुओं की बात कर रहे हैं। और पशु जो हैं हम सभी को प्यारे होते हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पशु होते हैं जिनसे हमें थोड़ा सा अपना बचाव रखना होता है। मानव जीवन की तरह वन्य जीवों का भी अपना अस्तित्व होता है, यानी जीव। जानवर एक प्रकार के बेजुबान प्राणी होते हैं, लेकिन अपने भाव को दिखा नहीं पाते हैं। और वन्य जीव कई अलग अलग चुनौतियों का सामना भी करते हैं, जिससे अवैध शिकार और जानवरों की खाल, दांत या फर की तस्करी करना इनमें शामिल रहता है। और मानव जीवन के अन्य वन्य जीवों पर भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। देखिए ये तो कई बार क्या होता था, पहले के समय की बात करें तो उस समय लोग शिकार किया करते थे और जंगली जानवरों को मारा करते थे। उन्हें मारकर अपने ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाते थे, उनके सिर को काट कर वहाँ लगा देते थे कि घर हमारा सुशोभित हो। लेकिन क्या होता है कि श्रोतो पल भर के लिए सोचे कि जब उन्हें मारा जाता होगा उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द वो महसूस करते होंगे। अगर हमारे घर पर आकर हमारे कोई मारे तो हमें भी गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है, तकलीफ़ भी होती है, अपने से बिछड़ने का भी दुख होता है, अपनों से बिछड़ने का। और इसी तरह से जानवरों के भी अपने होते हैं, बच्चे भी होते हैं, साथी भी होता है, तो अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उन्हें भी दुख होता है। और जब इंसान दुखी होता है तो दुखी दिल से कभी किसी के लिए अच्छा नहीं निकलता है। बिल्कुल श्रोता, होता है ना, इसी तरह से आपके साथ भी होता होगा। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जानवर जो हैं बेजुबान होते हैं, इन्हें मारना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। तो और भी कार्यक्रम में हम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी साझा करेंगे, लेकिन पहले कार्यक्रम में सुनते हैं।

0: श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और विश्व पशु दिवस पर हम बात कर रहे हैं, तो आज के दिन का उद्देश्य दुनिया भर में पशुओं के प्रति प्रेम, दया, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है और उनके कल्याण के लिए लोगों को जागरूक करना है। 4 अक्टूबर यानी आज का दिन जो है काफ़ी खास रहता है पशुओं के लिए। पशु और प्रकृति के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। पहली बार 1925 में जर्मन के बर्लिन में पशु दिवस से जुड़ा आयोजन हुआ था। बाद में ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुआ था। पशुओं के प्रति क्रूरता और अत्याचार को रोकना आज के दिन का उद्देश्य रहता है और साथ ही साथ पशुओं को उचित भोजन, पानी और आश्रय उपलब्ध करवाने के प्रति भी जागरूक करना आज के दिन का उद्देश्य रहा है। आवारा पशुओं की देखभाल और जिम्मेदारियां पालतू पशु पालने को बढ़ावा हमें देना चाहिए और वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की भी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को समझाना है कि पशु भी संवेदनशील जीव हैं और उन्हें भी सुरक्षित जीवन का अधिकार है। श्रोताओं, अपनी बात और जानकारियों के साथ साथ फिर से कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, तो आप भी इंजॉय करें।
1: AI powered personal music teacher from Saregama.

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला। आज बात हो रही है एनिमल दिवस के बारे में। तो थोड़ा सा हम अगर सोचें कि हम पशुओं के लिए क्या कर सकते हैं, तो आसपास के पशु पक्षियों के लिए हम पानी और भोजन रख सकते हैं। घायल पशु और पशु चिकित्सा तक पहुंचाने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। पालतू पशुओं की उचित देखभाल कर सकते हैं और किसी भी पशु के साथ हिंसा या क्रूरता होने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित भी कर सकते हैं। पशुओं के प्रति हमारी दया और संवेदनशीलता ही हमारे समाज की इंसानियत की पहचान है। अगर हम बात करें तो देखिए श्रोताओ, क्या होता है कि कई बार हम सोचें पल भर के लिए कि हम तो चलो खाना खा लेते हैं, खुद कमा के खाते हैं, ये पशु और पक्षी क्या खाएंगे, पशु भी अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन पक्षियों की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कहीं से दाना मिले तभी उनका गुजारा होता है। तो क्यों ना थोड़ा सुबह उठते ही जल्दी हम उनके लिए दाना डाल दें तो उनका पेट भी भर जाता है। पेट तो सभी को लगा है, भूख भी सभी को लगती है। कई बार हमारे जो है बड़े बुज़ुर्ग हमें ये बताते हैं कि पशुओं को जो है दाना ज़रूर डालना चाहिए और हम उनके लिए पानी भी कहीं छत पर या अपने घर के कोने पर, किनारे पर, आंगन में कहीं भी रख सकते हैं, जिससे वो अपनी प्यास भी बुझा ले। गर्मियों के दिनों की बात करें तो श्रोताओं, प्यास के मारे हमारा ही बेहाल हो जाते हैं, हम लोग ही, हमारा बुरा हाल हो जाता है। तो बेचारे ये पक्षी क्या करते होंगे, ये भी पानी के लिए बड़ा इधर उधर घूमते हैं या पर कई बार तो जो है परेशान भी हो जाते हैं। तो हम इनके लिए पानी का भी एक बंदोबस्त कर सकते हैं, जिससे ये जो है अपनी प्यास बुझा ले। और थोड़ा सा अपनी जानकारियों के साथ हम आपको फिर से लिए चलते हैं कि संगीत की दुनिया में। तो आइए एंजॉय करते हैं इस कार्यक्रम के प्यारे से गीत को।

श्रोताओ, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम पहुंच चुके हैं फिर से एक बार आकाशवाणी में और रेडियो गुंजन में हम पहुंच चुके हैं। और रेडियो गुंजन की बातचीत जब होती है तो बहुत सारे विषयों पर होती है, तो अगला हम विषय ले चुके हैं, जैसे पशुओं के बारे हमारे बातचीत हो रही थी, तो पशु हमारे जीवन और प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धरती पर मनुष्य के साथ साथ अनेक प्रकार के पशु रहते हैं, हम सभी जानते हैं। हम अपने आसपास बहुत सारे पशु और पक्षियों को देखते हैं और जब उन्हें देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान उन पर जाता है और साथ ही साथ मन करता है कि उनके लिए कुछ किया जाए। तो ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उन्हें जो है उन पर होते हुए अत्याचारों से उन्हें बचा सकते हैं। अगर कोई कर रहा है अत्याचार तो बचा सकते हैं, और खुद भी हमें उन पर किसी तरह का अत्याचार नहीं करना है। और पशु हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी भी होते हैं, हम सभी जानते हैं। गाय और भैंस जो है हमें दूध देती है, इसके साथ साथ बकरी भी दूध देती है, और बैल की बात की जाए तो वो हमारे काम आता है, किसानों की सहायता करता है, हल जोतने का काम करता है। घोड़ा भी हमारे काम आता है, भार ढोना उसका काम होता है, हमारे लिए बहुत सारे काम घोड़ा करता है। ऊँट और गधा भी पुराने समय में मनुष्य के सहायक हुआ करते थे, हम सभी जानते हैं। तो पशुओं से बहुत सारे काम हम लिया करते थे। और कुत्ता घर की रक्षा करता है और साथ ही साथ जो है रक्षा करने के साथ हम सभी जानते हैं कि वफादार वो रहता है, और मनुष्य का वफादार साथी माना गया है। और पशुओं में हमें ऊन भी मिलती है, चमड़ा मिलता है, वो हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं को बनाता है। तो देखिए श्रोताओ, पशु हमारे लिए कितने काम के होते हैं, कितने उपयोगी होते हैं। जब हमें उनसे इतना फ़ायदा होता है तो हमारा भी फर्ज ये बनता है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें। उन्हें कोई तकलीफ़ हो रही है या उन्हें कोई बीमारी है तो हमें जो है डॉक्टर को बता सकते हैं, डॉक्टर को वहाँ से ला सकते हैं, और साथ ही साथ जो है श्रोता उनकी ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है, आवारा पशु बीमार हो जाते हैं, वहीं पड़े रहते हैं, कोई उनकी देखभाल नहीं करता है। तो श्रोता, थोड़ी सी हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उन्हें चारा दे सकते हैं, चारे के साथ साथ डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर हम किसी के लिए थोड़ा सा अपना पैसा भी लगा देते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती है, क्योंकि दर्द में अगर कोई हो उसे थोड़ी सी राहत कहीं से मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं दुआएँ ही देता है। तो पशु जो होते हैं बेजुबान होते हैं, अगर उनकी हम सहायता करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी मन से हमारे लिए अच्छा ही कहें। तो जीवन में आए हैं तो थोड़ा सा दया का भाव हम सभी के मन में होना चाहिए, चाहे वो मनुष्य के लिए हो या फिर हो हमारे जानवरों के लिए, क्योंकि जानवर भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जंगली पशु भी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में बहुत सारी हमारी सहायता करते हैं, जैसे जंगली शेर, जंगली बाघ, हाथी, हिरण, अन्य वन्य जीव भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, और हम इन्हें देखने भी जाते हैं। कई बार चिड़ियाघर में बहुत सारे लोग पहुंचते हैं इन्हें देखने के लिए, और बच्चों को भी हम बताते हैं, बच्चे भी उन्हें देखते हैं, बच्चों को पहचान भी होती है और बच्चे खुश भी बहुत होते हैं। तो श्रोताओ, ये भी हमारे जैसे ही हैं, इन्हें भी जान होती है, थोड़ी सी इनका

रखें, ख्याल रखें। और फिलहाल कार्यक्रम में हम रखते हैं आपका ध्यान और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा संगीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोता, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है समाचारों का, तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायतों को अपनी उपलब्ध भूमि और संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर आय के स्थायी साधन विकसित करने चाहिए। शिमला जिला के चमियाना में आज खेलकूद प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। अनिरुद्ध सिंह ने युवाओं को खेल गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियों से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से चमियाना स्कूल को CBSE स्कूल के रूप में शुरू करने की घोषणा की। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। हमीरपुर में आज भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि संगठन प्रत्येक सीट पर जीत के लक्ष्य के साथ काम करेगा। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रदेश के 8,007 बूथों पर संगठन को मजबूत करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा सह प्रभारी दर्शना सिंह ने कांग्रेस पर परिवार केंद्रित राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है। बैठक में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि और भाजपा को अभी से पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी बैठक को संबोधित किया। भाजपा सांसद राजीव भारद्वाज को संसद की महत्वपूर्ण रक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। समिति में लोकसभा के 21 जबकि राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल किए गए हैं। भारद्वाज ने कहा कि समिति के सदस्य के रूप में वे अपने दायित्व का पूरी निष्ठा, गंभीरता और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर केंद्र की वित्तीय मदद को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के भरपूर सहयोग से ही आज राज्य में विकास कार्य संभव हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसके लिए केंद्र का आभार तक नहीं जता रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो व्यापक जाल बिछ रहा है वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से संभव हुआ है। नेटवर्क बिछाया जा रहा है जिससे सफर काफी आरामदायक हो गया है। केंद्रीय लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री इस वर्ष 13 मई को आयोजित 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की गाथाओं को उजागर करने वाले छोटे पोस्टर जारी करेंगे। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रस्तावित 158 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का 100% अवार्ड घोषित किया जा चुका है। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि प्रभावित लोगों को भूमि मुआवजे के रूप में अब तक करीब 2,285 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।
2: कांगड़ा एयरपोर्ट ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। इसकी एक्सपेंशन जो कि 1376 मीटर जो हमारी एयर स्ट्रिप है उससे बढ़कर 3010 मीटर की जानी है। ये ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट है। हमारी जितनी लैंड एक्विजिशन अवार्ड है वो 100% डिक्लेयर कर दिए गए हैं लैंड एक्विजिशन कलेक्टर द्वारा। उसमें लगभग 2285 करोड़ रुपया लैंड कंपनसेशन का दिया भी जा चुका है जितने बेनिफिशियरी है इसके। साथ में 14 मोहालों में जो लगभग 13 मोहाल का R&R अवार्ड भी घोषित किया जा चुका है उसमें लगभग 180 करोड़ R&R अमाउंट है वो भी डिस्पर्स किया जा चुका है। वो प्रोसेस कंटिन्यूड है। ऑलमोस्ट 150 करोड़ की और डिमांड जो है सरकार के पास भेजी गई है।
1: उन्होंने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के तहत मांझी खड्ड पर प्रस्तावित पुल के निर्माण को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच चर्चा जारी है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। समाचार इस अंतराल के बाद।
3: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
4: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है।
1: 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
3: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
1: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
4: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
5: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
4: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
5: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
4: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
5: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
4: लड़ी हक की लड़ाई,
5: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: शेष समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पिछले 12 वर्षों में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार उनकी सरकार के प्रयासों से जंगलों में सक्रिय सशस्त्र माओवादी हिंसा और आतंकवादी काफी हद तक समाप्त हो चुका है।
7: ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 से 8 अक्टूबर तक बिलासपुर और कुल्लू जिले में मनाली और अटल टनल प्रवास के चलते विशेष यातायात प्रबंध लागू किए गए हैं। 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति के बिलासपुर में एम्स दौरे को देखते हुए सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। इसके तहत जिले में दोनों दिशाओं से आने जाने वाले वाहनों को घाघस चौक से कंदरौर, बघेड़, औहर, ऋषिकेश, भराड़ी, ओपन एयर जेल जबली मार्ग से वाहनों को भेजा जाएगा। उधर कुल्लू जिले में 6 अक्टूबर रात 8 बजे से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को अटल टनल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। 7 अक्टूबर को पलचान से अटल टनल तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इसी तरह 6 से 8 अक्टूबर तक रामबाग से हिडिम्बा मंदिर व ओल्ड मनाली की ओर सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। पीएम सेतु योजना ने आज अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इस योजना के तहत उन्नत ITI के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना बढ़ाई जाती है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
8: पीएम सेतु योजना का उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी को मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा।
6: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर दिया बल। भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा, विधानसभा चुनाव में सभी 68 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी पार्टी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर केंद्र की वित्तीय मदद को लेकर राजनीति करने का लगाया आरोप। नई दिल्ली में पेंशन अदालत में कल वरिष्ठतम पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशनरों की शिकायतों का होगा समाधान। और राष्ट्रपति के 6 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित दौरे के चलते बिलासपुर व कुल्लू जिलों में विशेष यातायात प्रबंध लागू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
0: तो समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोता, इसी गीत के साथ अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। अगली बार नई बातों, नई जानकारियों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।
1: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
2: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है।

0: समोसा मिलेगा।
1: शट अप कर जाओ।
2: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
3: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार।
2: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।

0: तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
1: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
2: आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी।
1: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। आपातकालीन वाहनों को रास्ता ना देने पर हिमाचल प्रदेश में 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। APL परिवारों को अब राशन डिपो से 13 किलो आटा मिलेगा। शिमला स्मार्ट सिटी की पार्किंग व्यवस्था में बदलाव, अब ठेकेदार नहीं बल्कि लोग होंगे हकदार। हिमाचल को केरल से करीब 14 रुपए प्रति यूनिट से अधिक दर पर बिजली मिलने का समझौता। अक्टूबर में रोजाना 900 मेगावाट तक बिजली मिलने की संभावना। बच्चों की देखभाल के लिए अब पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पेड पितृत्व अवकाश की सिफारिश की। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि सड़क पर आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दें और उन्हें रास्ता देने में किसी तरह की लापरवाही न बरतें। यदि कोई वाहन चालक आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नियम का पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी बार नियम तोड़ने पर 6 माह तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों सजा का प्रावधान बताया गया है। पुलिस का कहना है कि एम्बुलेंस, दमकल और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए समय पर रास्ता मिलना बेहद जरूरी है। कई बार रास्ता न मिलने के कारण मरीज को अस्पताल पहुंचने में देरी हो सकती है और किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। पुलिस ने वाहन चालकों को निर्देश दिए हैं कि जैसे ही सड़क पर कोई आपातकालीन वाहन दिखाई दे उसे सुरक्षित तरीके से रास्ता दें और अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे करें। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एपीएल परिवारों को मिलने वाले राशन के कोटे में बढ़ोतरी की गई है। नई व्यवस्था के तहत एपीएल परिवारों को अब 12 किलो की जगह 13 किलो आटा वितरित किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कोटे में ये बढ़ोतरी की है। विभाग के अनुसार महंगाई और रसोई के बढ़ते खर्च को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे प्रदेश के एपीएल परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक

आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को नई व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को बिना किसी देरी के संशोधित राशन कोटे का लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस फैसले से उन परिवारों को विशेष रूप से राहत मिलने की उम्मीद है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अपने घरेलू राशन की जरूरत पूरी करते हैं। शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत पार्किंग व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। अब पार्किंग व्यवस्था में केवल ठेकेदारों का ही अधिकार नहीं रहेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी पार्किंग आवंटित की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार ऑकलैंड और टूटू में आए आवेदनों को मंजूरी दी गई है और सोमवार से पार्किंग का आवंटन शुरू होने की बात कही गई है। बताया गया है कि ऑकलैंड पार्किंग की क्षमता करीब 315 वाहनों की है, जबकि इसके लिए 230 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। पार्किंग के लिए आवेदन करने वाले लोगों के बीच पात्रता के आधार पर आवंटन किया जाएगा। नई व्यवस्था में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। इससे उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें अपने वाहनों को पार करने के लिए लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम की ओर से पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से पार्किंग का बेहतर संचालन हो सकेगा और स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए केरल के साथ बिजली खरीद का समझौता किया है। समझौते के तहत हिमाचल को अक्टूबर महीने में रोजाना करीब 900 मेगावाट तक बिजली मिलने की संभावना है। केरल के साथ पिकलॉड आवर्स में बिजली खरीद का समझौता हुआ है। हिमाचल में बिजली की मांग बढ़ने के दौरान अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न राज्यों और परियोजनाओं से बिजली की व्यवस्था कर रही है। हिमाचल को विभिन्न बिजली परियोजनाओं से भी बिजली का हिस्सा मिल रहा है। प्रदेश सरकार अपने हिस्से की बिजली दूसरे राज्यों को बेचती भी है, लेकिन जरूरत के समय बिजली खरीदने की स्थिति भी बनती है। बिजली की दर को लेकर केरल के साथ हुआ समझौता 14.5 रुपए प्रति यूनिट से अधिक बताया गया है। यह समझौता पीक लोड के दौरान बिजली की जरूरत को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में बिजली की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखना और मांग के समय बिजली की कमी से बचना है। बच्चों की देखभाल को लेकर अब पिता की भूमिका को भी महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र में पुरुष कर्मचारियों के लिए पेड़ पितृत्व अवकाश देने की सिफारिश की है। आयोग ने निजी क्षेत्र में पुरुष कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 30 दिन की पितृत्व छुट्टी देने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही आयोग ने मातृत्व अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी मजबूत करने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि बच्चों की देखभाल केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पिता की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सिफारिशों में ये भी कहा गया है कि बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों को नौकरी और वेतन से जुड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े। आयोग ने सरकारी और निजी क्षेत्र में बच्चों की देखभाल से जुड़े नियमों में समानता लाने पर भी जोर दिया है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है जिससे वे अपने छोटे बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकें। रिपोर्ट में बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए कामकाजी व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने की सिफारिश भी की गई है। साथ ही माता पिता को अपनी परिस्थितियों के अनुसार छुट्टी लेने की सुविधा देने पर जोर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं के वितरण के क्षेत्र में तेजी से बदलाव की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों और पहलों को लागू करते हुए प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शुरू किए गए इन सुधारों का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। नई डिजिटल व्यवस्थाओं और मौजूदा प्रणालियों में किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और विभाग अब महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को पहले की अपेक्षा अधिक तेज, व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से संचालित कर पा रहे हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: मिलेगा।
1: सटअप कर जाओ।
2: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
3: अरे भूल गए भूल गए भूल गए, अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार।
2: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
3: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
2: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
4: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे अरे भाई पीने का पानी और ले आ,
2: ले लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है
3: भैया? अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी।
4: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
6: मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
2: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन?
7: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
8: मोहित मेरा इस्तीफा।
9: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
8: सॉरी यार,
9: काम कीजिए आप लोग।
7: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
10: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
11: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
12: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
13: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
11: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता, पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
14: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
11: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
14: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
15: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
16: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
15: सॉरी बेबी।
16: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तंगी दोनों के लिए चल रही है ना। अगर ना तो

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों, इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: समोसा मिलेगा।
1: सटअप कर जाओ।
2: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
3: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार।
2: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
3: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
2: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे अरे भाई पीने का पानी और ले आ,
2: ये लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है
3: भैया? अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी।
4: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
6: मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
2: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन?
7: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
0: मोहित मेरा इस्तीफा।
8: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
0: सॉरी यार,
8: काम कीजिए आप लोग।
7: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
9: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
10: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
11: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
12: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
10: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता, पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
13: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
10: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
13: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
14: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
15: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
14: सॉरी बेबी।
15: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो, मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तंगी दोनों के लिए चल रही है ना।

करे शोर, अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है संग मरना है,
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि।

बाप का।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।